जोजोलपाथ नेपाल सम्बन्ध 600 पी खुद बच्छलाका सप्तमी थो रेडियो नेपाल ख आनेना दिशा जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार सरकार थोए वैशाख 28 गते सोमबार संघीय संसदका मङ्का बैठक याता क घायता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नापा इना ब्याएको कोछिगुदु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालय सिंहदरबारे मिगोचोङको मन्त्री परिषद

0: बैठक राष्ट्रपति पौडेल यता संसदे कघाको नीति इनापियागु उगु बैठके सकल सांसदे गुबोतिया नीति सुच बिता इनापियागु को छिनागु सरकार प्रवक्ता नापा शिक्षा मन्त्री तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई जानकारी बियादिल। बैठक थिथि देशे दुपी झिङ्यामा महावाणिज्य व वाणिज्य दूत पिन्त पदमुक्त यायगु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन या बाध्यकारी श्रम महासन्धि प्रोटोकल नम्बर 29 अनुमोदन या नीति संघीय संसद नापा दूत बिता स्वीकृति लल ह्यागु नापाया विषेद को छिनागु मन्त्री पोखरेललाई जानकारी बियादिल। थोएदथि सरकार प्रवक्ता नापा शिक्षा मन्त्री पोखरेल सर्वोच्च अदालत या प्रधान न्यायाधीश सिफारिस नापा जुगु गल्ती त भिङ्केगु कुत कथन सुगु धयादिगुदु मन्त्री परिषद बैठक या कोछिना त न्याङ्केगु छुले संसार कमिया न्यासया लिसा सम्मन्त्री पोखरेल न्यायलागा भिङ्के मा धैगु मा कघागु नीति आ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन या लिधंसा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस जुगु कना दिल। संसदीय सुनवाई समिति प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा या संसदीय सुनवाई प्रक्रिया याकिगु जुगुदु संवैधानिक परिषद या बैठकमा प्रधान न्यायाधीश शर्मा या त सिफारिस यायो सुनवाई समिति या मिकोचुङको बैठक सुनवाई प्रक्रिया निहजाकेगु जो प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्मा विरुद्ध उजुरी बिता आह्वान यागुदु समिति या सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश सुनवाई या नीति चिनुया ई बिया उजुरी आह्वान यागु जानकारी बियादिल। परराष्ट्र मन्त्रालय लिम्पिया धुरा लिपुलेको कालापानी लागाया सीमा हाट्या कुटनीतिक माध्यम नङ्के त सरकार जुया चुनाको जानकारी बिगुदु मन्त्रालय मिग गोसागको जहाज होले प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल छेत्री लिपुलेका विशेषण सरकार या थासा थ्वाथुइक धारणा पिथने धुङ्काको कनादिगुदु चिनो भारत थिए न्यायगु कैलाश मान सरोवर या त नेपाया भूमि लिपुलेक जुसे वनिगु थ्वाथुई क से धारणा थोए वैशाख 20 गते हे पिथने धुङ्काको प्रवक्ता क्षेत्रीय थापुदु नेपाल सरकार महाकाली पूर्वया लिम्पिया धुरा लिपुलेको कालापानी नेपाया भूमि जुगु थासे थो तथ्य 1816 या सुगौली सन्धि स्पष्ट नेथना तगुली थोहे अडाने नेपाल कुटनीतिक समाधान या कुत यनाको वेकलङ्कना दिल नापान्थो विशेषण निगु जलाखला दे भारत चिन्याता जानकारी याकागु इले इले लुमङ्का चनागु न प्रवक्ता क्षेत्रीकना दिल। थिथि विश्वविद्यालय खाली जुयाचङ्ग उपकुलपति सिफारिस स्याय त निसङ्गु समिति दरखास्त आह्वान यागुदु उपकुलपति लिएगु व सिफारिस समिति च्यागु विश्वविद्यालय निम्ति दरखास्त आह्वान यागु ख समिति त्रिभुवन विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालय लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय कृषि तथा वन विश्वविद्यालय मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय व राजसी जनक विश्वविद्यालय खाली जुयाचङ्ग उपकुलपति नीति आवेदन माग्यागुदु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदीय कार्यालय नेतृत्व ये स्वनि गया भूमिहीन सुकुम्बासी व अव्यवस्थित बसोबासी एकीकृत डिजिटल लागत मुङ्केगु जाजुगुदु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहाय प्रेस व अनुसन्धान विज्ञ दिपा दहालया कथन डिजिटल लागत मुङ्केगु ज्या सिधेता सङ्गोकना दिगुदु वेकया कथन हपाङको खुसी आ ये या होल्डिङ सेन्टर ए दुपी व पिने चना चौपी वयाँ लिउ झोली क मेगु जिल्ला एकीकृत डिजिटल लगत मङ्केको ज्या जुया चङ्गुदु होल्डिङ सेन्टरे मचुनेपी मनुतेगु नीति सरकार सार्वजनिक सूचना पिथना थागु इदुने मागु भन नापा लगत मुङ्के त केन्द्रीय बोतिका त इनाप्याना दिगुदु लगत मुङ्केगु नीति सङ्गु कथा या आवेदन या वर्गीकरण यागुदु राष्ट्रिय परिचय पत्र दुपी नागरिकता जक्क दुपी व छुन परिचय पत्र मधुपी मनु त्यता ब्याग्लन ब्याग्लन श्रेणी खेतया तल मुङ्केगु ज्याजुइगु जुई डिजिटल प्रणाली स मनुपत्तिक व्यक्तिगत व पारिवारिक थल सामाजिक आर्थिक अवस्था आय स्रोत पेसा स्वैच्छिक योग्यता स्वास्थ्य अवस्था सिपो भूमि नापाया थल दुथ्याकेमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल भूमि नापाया फुक हाट्या नङ्केगु याना सरकार योजना चनागु व पीडित ग्या मुआगु हत्याचा मुआगु धका बचा बिया दिगुदु। प्रतिनिधि सभा कथया कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति या मेगया बैठके मन्त्री रावल भूमिया हत्या नङ्केगु नीति मसिका व्यवस्थापन ज्या मुख्य जुकुली उकिया नीति सरकार पला न्याका चनाको कना दिल सरकार भूमि नापा या हत्या सेला केगु नीति ज्या यानागु मेगु वातक प्रगति या छुन पला त खने दैगुली ढुक्क जुइता मन्त्री बचाउ बिया दिल। थोए बैठकके सांसदेसँग भूमिहीन दलित सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी हात्या दीर्घकालीन कथन नङ्केता गुठी नापाया हात्या त नङ्केता व सहकारी पीडित हात्या नङ्केको नीति ऋण असुलियो बचत लित बिग विशेषण नियसना दिगुख। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह या राजनैतिक सल्लाहकार असीम शाह व नेपाल नीति साउदी अरेबिया या राजदूत फहद मोहम्मद अजमी मिनी किरण मिग पवित्र हज यात्रा नीति मक्का वनेगु वनिपी नेपामी हज यात्री पिनीगु पुचेता शुभ्या दशना दिगुदु। शुभ्या दिशागु ज्याझले वेक पिसन नेपाल व साउदी अरब दतुया धार्मिक सांस्कृतिक व थथवया सपु अजसेनलाईगु भलसा पोङकुसे हज खे वनिपिन्ता मुस्लिम धर्मावलम्बी तेगु तालागु सुरक्षित व मङ्गलमय यात्रा या भिन्तुना नापा देशना दिगुख। वेक पिसा हज इस्लाम धर्मावलम्बी तेगु महतन जाको धार्मिक आस्था अनुशासन व आध्यात्मिक एकता या ची जुगु नेथसे मनु तेगु अफैगु व्यवस्थापन सुरक्षा व मागु सहकार्य नीति स्वपुदुगु निकाय या ध्यान कोसाला दित नापा इनाफ याना त अगुदु। सोनिगया खुसी सिथे चना चोम्पी सुकुम्बासी थनेगु नापाङ्गु ज्याको चागुदु। सरकारी व सार्वजनिक जग्गा अधिकरण याना देकगु छेन्टहरा चिकगु यहाँ जिल्ला प्रशासन च्याकु धागुदु। वैशाख 12 गते निसिन ह्याकको अभियान कथ नि खुस चे नेखा अवै छेटहरा चिकगु ख थोए दती मानवीय पक्षता वाचाका छेटहरा थुपी मनुतेता होल्डिङ सेन्टर रे तया तगु शहरी विकास मन्त्रालय धागुदु। प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद ज्याकु खुसीबा चाफी लुह क्याबले स्वीकृत मापदण्ड व कानुन कथन जक्क याय त उज बिगुदु। थ म दुथे चाफी लुह यङका मिगु यानाचुङ्गु ख पिहा वगुले थथे उज बिगु ख थो विशेषण लच्छी लच्छी दुने मन्त्री परिषद प्रतिवेदन बि त गृह मन्त्रालय या त उज नापा बिगुदु। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल हलिनियङका कूटनीतिक च्याचो स्वपुया थ्या अपयावनासँग धयादिगुदु। नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद ने च्याकगु बुदिया लसत्या सभामुख अर्याल थते धैदिगु ख ज्याजोसँग परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल विदेश नीति व कूटनीतिक योगदान या त चोछ्या बहगु नापा धैदिगु ख। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल नापा युरोपेली सङ्घ यु या राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो नाप्लाना दिगुदु। सियाँदरबारे जुगु नाप्ला ज्या निगु पक्ष दतुया स्वपुयता बल्लाकेगु सलह जुगु ख अध्ययना अस्ट्रेलिया राजदूत साइमन अस्टन वेक नापा सलह ब्याका दिगुदु। नेपाल व अस्ट्रेलिया या दतुया स्वापु शिक्षा विकास विशेषण सलह जुगु ख। नेपाल भाषा या रङ्गिन वापौ लहना झिन सोद फुना झिम्पेन्द केङ्गुदु। मिग यन जुगु छगु ज्यासु या दथि लहना वापौ या व्यवस्थापन पुचल नेपाल भाषा या व नेवा खेले तजिक योगदान बिया दिपी थिथि मनुपिन्त सिर्पाना पाहङ्गु ख छुदिन हने मधुमा पत्रकार सुरेश किरण मानन्दर या लुमन्ती लहना सुरेश किरण पत्रकारिता सिर्पाना पाहङ्गु ज्याजोसम व्यवसाय नपा पत्रकार जुया दिमा रविन्द्र राज ताम्रा कार्य सम्फु संस्कृति समाज व्यवसायसँग पित बोज्या नपा जुगु ख। ठाउँ कानुन दिवस थिथि ज्याजो या नहनासँगदु। नेपाल प्रधान न्यायालय पलिस्ता जुगु दिन या त कानुन दिवस या हना बिगु व नेपाल प्रधान न्यायालय एन दे के धुङ्कानी विक्रम सम्बत 2009 वैशाख 26 गते निसि थो दिवस हनासँगदु। थोए दिया लुमन्ती दपतिकम वैशाख 26 गते कानुन दिवस हना हनेगु या नाचङ्गु ख। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्थुगुसिया मनसुनिया इले नेपाली सरदर्शिबे म वा वैगु व तापक्रम उपवैगु प्रक्षेपण यागुदु मिग विभाग राष्ट्रिय मनसुन फोरम या ज्याजो पाखेन्थो प्रक्षेपण पिथङ्गु ख मनसुनिया ऋतुगत अवस्था विशेषण जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या मौसमविद सुदर्शन हुमा गाई वैगु ऋतु बले देया यक्को थासे सरदर्शिबे म वा वैगु सम्भावना कुबिगु कनादिल वैक्लाउ वैगु जेठ 18 गते निसे असो 14 गते तक दैगु मनसुन या इले यक्को थासे सदर्शिबे म वा वैगु अधिकतम व न्यूनतम तापक्रम थासा देन्यङ्क सरदर्शिपे उपजुइगु सूचना ब्यादिगु ख मौसमविद हुमा गाई या कथ विभाग विश्व मौसम संगठन कथ विश्व व क्षेत्रीय जलवायु सूचना उत्पादन केन्द्र तेगु वा फे प्रारूप दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्च नापाय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मोडल तेगु विश्लेषण याली दशा ऋतु या सूचना ब्याचुनागु जानकारी ब्यादिल आ देश पिनेया बुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बापुको चाके गुनु प्रस्तापे इरान या लिस थौ बहनी तक वैगु दुखुमा याना दिगुदु अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो इरान वैगु प्रस्ताव लुवापुको चाइगु कथा वैगु भलसा पोङ्गा दिगु ख थ्वे दथि राष्ट्रपति ट्रम्प होर्मुज सुरक्षित नक्सा जहाँ से त सुरक्षित थासे यङ्केगु कथा हाक्न प्रोजेक्ट प्रथम अभियान ह्याकेगु धैदिगुदु अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रुस युक्रेन दथुया सुनुया युद्ध विराम जुगु घोषणा याना दिगुदु वेकया कथा मे 9-11 तक युद्ध विराम छेलिगु जुई थो इले निगुन दे दथुया फुक्क सैन्य गतिविधि डिकेगु सहमति जुगु व छु बन्दितेता पित हेगु ट्रम्प या थापुदु वेकलान त्रुथ सोसल पाखे चोसे रुसे विजय दिवस युक्रेन द्वितीय विश्वयुद्ध नापाया स्वपुदुगु ज्याजोया हुनी थो सहमति जुगु नेथना दिगु ख आ मौसम या जानकारी थौ कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या हिमालय पहाडी लागा छगुनीगु थासे व मेगु पहाडी व हिमालय लागा पचा थासे न न्यायगु व लाप्सा तया वा वैगु धुकुमा यागु दु मिग स्वनिगले नि पेङ्गु फुटी खुगु डिग्रिया क्वाज लुइकगु ख धासा थौ नि पेङ्गु निसे नि खुगु डिग्री सेल्सियस दथि था वनिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पूर्ण चिताइले नेपाली भाषा या समाचार निनादिस शुभ
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार

ए भीमेश्वर को मेला बेड भाइये को बेला बुझो ए भीमेश्वर को मेला बेड भाइये को बेला लाई देव माया ए

संसदीय सुनाकी लाका दाङराङ गोचु तफकी तिरे ठिमखाङ छेनपोकी मालौ सेनक्वा सिलोन बालेन्द्र साकी छप्सी ठोतोनपो असीम सातङ एमबी तन्दोग्ला साउदी अरेबियाकी सुङछाप फहद मोहम्मद आसमी मिनकिर्की आरिङ हज जिकोर्की तन्दोग्ला मक्का फेउ एमबी हज मितिवी छोकपाला फेपग्याल सुङ्वा फेपग्यालकी ल्यारिमला खोङतिवी एम्बुतङ साउदी अरब पर्की छोरी रुक्सुङतङ पिर्मी तम्जी मङ गेसा जफ इचे क्यानङ्गेन हज जिकोला छोकसुक कितुब एम्बी मुस्लिम छो च्याप्तिवा तेरिला टसिदलिक सुनाङसुङ लोपजुङ छेन्डिक तेजिन लक्ष्य लुनपु सस्मित पोखरेलकी एम्बी तन्दोग्ला अस्ट्रेलियाकी सुङछाप साइमन अन्स्टङ क्यान थुक्थेत क्यानङ्गवा सिंह दरबाला वोतुब लोनखांगला छुंगुप थुकथेत की लिम्बाला लोनपो पोखरेल तंग सुंगछाफ अंस्ट के यम्बु तंग अस्ट्रेलिया पर की तमजी लोबजुंग तंग यार्गे की लाकतिवा कोला टोंगु क्या नगुबगेन तुग्रांग केने थुकथेत की लिम्बाला खोंगतिवी पला थोरिम लोबजुंगला ग्यालखफनी पर की चिकडिल की नेतांग कोला संग टोंगु छुंगुप सेनग्वा न्याम्डुल ग्यालखप छोपी तन्दोग्ला एम्बी स्थायी कुछप लोकबहादुर थापाकी सुङक्योप चरिकताङ ठिम्की शिला कितुब्लाकी तन्दोग्ला एम्बी सुङकी ख्यालन गोतुप सुङ्गवा न्याम्डुल ग्यालखप छोपी उले ल्याखुङला कोडी ख्याउ थेङ्गेकी आप्रवासन समीक्षा मञ्चकी टोङ्गुला सुङक्योपताङ टडिकी कोला खाक्सेन्बो चिने सुङलप नङ्गिन कुछप थापाकी एम्बु छुगेल्ला लाका कितुब्ला मि मङ्बु तोङ्गुप ग्यालखप हिन्दुप तापकी सुङक्योपकी तन्दोग्ला सुङकी नमसङ नासम सुङकी सान देछिन त चुकसुम्ला डेङ्गु नजातिमा सुङक्योप कितुब्ला सुङ्वा एपिडेमियोलोजी तङ्ग सरुवा नजा युङ्म जमा साखकी नजा साखकी चो डाक्टर गोकर्ण प्रसाद दाहालकी सान देछिन त चुकसुम्ला डेङ्गु नजा थुङ्गुप तपकी गोमालारङ चाकपो कितुब्ला सुनाङ्वा चो दालकी सेतोप नाङसे नौखलडुङ्गा जोङखी सिद्धिचरण टोङ्खेर झापाकी भद्रपुर टोङ्खेर बिर्तामो टोङ्खेर मेची टोङ्खेर तङ कस्ना केवल टोङ्खेर युल्छोकपा सुनसरीकी धरान उपमहानगरपालिका म्याग्दीकी बेनी टोङ्खेर चितवनकी भरतपुर महानगरपालिका रूपन्देहीकी बुटवल उपमहानगरपालिका मकवानपुरकी हेटौडा उपमहानगरपालिका सिन्धुलीकी कमलामाई टोङ्खेरताङ ललितपुरकी ललितपुर महानगरपालिकाला डेङ्गु तेमा सुङक्योप कितुब्ला सोयेन सुनसरीकी बराज क्षेत्र टोङ्खेर वडा आङ्गाकी तिनकुने मिलिजुली लोप्टा चिप्ला आरिङटोप्ला मोटरसाइकल दप्योग्ला सोनी मेरा चिक्ना सगलङ्गवा आरिङटोप्ला छुजोजी चोला सिमेन्टकी कल्फर तङक्यान मोटरसाइकल थुक्ने मोटरसाइकल तोङ्गुपमे धरान उपमहानगरपालिका वडा आङ्गाकी लो सुमजुकी मनिष बस्नेत नासगलुप चोङखी कुर्सुङमाकमी ल्याकुङ सुनसरीकी लेन ख्याफेलकी तोमी चन्द खट्काकी ख्यान्थोक नङ तुग्रङ केने महोत्तरी जोङखी पिपरा युल्छोकपा वडाङ ठुक मुसहरी टोला दाङ लुङकी लुङ गेम्नी छुङमी गोठ्या सिङनी आम्पुमचिक नासगलङ्गवा लुङमाङबो गेम्नी छुङमी गोठ्या सिङनी पिपरा युल्छोकपी लो ङपचुकी सुनिता सदा नासगलुप जोङखीको सुङमाकमी ल्याखुङ महोत्तरीकी सुङसेपा शैलेन्द्र फटकी ख्यान्तोक नाङसुङ रेडियो नेपालनी शेर्वी साङ्गेर डुप्सुङ थुचिसे

आजु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिरी ढाङनी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ युलुचोहो रामचन्द्र पौडेलसे हुल्ला गान्भा मिनी कदेला ज्ञान थेन सिफ ग्याम दातेला मिनीसे लाभ किनबारी खामदौला बिसी सुङबा मुला मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान से याम्बुरी सेङबा खेपा खुयु मिनी कदेला मोक्युलो ह्वाल्डी लेङमो थान्छुबा नै युलुचोहो से चुताम सुङबा खिल्ला युलुचोहो पौडेलसे चु ह्वाल गाछा ला थेन धातेला पुस्ताला चाम ताबारी खाम गाई सुङबान वाल ज्याना लासी थुम गाई बिसी ज्याबाडानबा सुङबा मुला सक्षम सांसद सशक्त संसद विवाद ताम्दा किन्सी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीला सांसद कदेला निराला संसदीय अभ्यास तेन गोबाङ विकास प्रशिक्षण तिनी हेन्से तिबा मुला ललितपुरला जाउला खेल्दी तिनी हेन्से तिबा प्रशिक्षण डी पार्टीला रोचोहो थेन नोर ब्लोन स्वर्णिम वाग्ले लोन्चेन कदे कविन्द्र बुर्ला कोटी थेन भूपदेव शाह रो लोन्चेन विपिन आचार्य लाछ्याम पार्टी धानपो कदेसे पो किन्स्युबा मुबा प्रशिक्षण गेखोर तिनी थिएन नाङ्गार ताबान मुला काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङ गेजाङला गोबाङरी याम्बु उपत्यकाला विकास प्राधिकरण से दिम्सा आरेबा कादे थेन खारङ दामान चिबा मिनी कादेला एकीकृत डिजिटल लगत किन्बा गे लाबन मुला बिसी पाङबा मुला काइब्लोन बालेन्द्र शाहला प्रेस थेन अनुसन्धान विज्ञ दिपा दहालसे सुङबा अनुसार डिजिटल लगत किन्बा तयारी झिङ्गे लाबा मुला बिसी सुङबा मुला विज्ञ दहालसे गिक्चा रेम्री दाते याम्बुला होल्डिङ सेन्टर दि मुबा थेन फिर्क्याब मुबा कादेला थेन चु लिचा स्यान्दो जोङरिन एकीकृत डिजिटल लगत किन्सेदा मुला तिनी थिम दिन्छेन लोलो लोलो गेखोर सेङसी धाङबान मुला नेपाली ग्रेन थिम खाङ सोबा राधा थिम दिन्छेन बिसी धाङबा लाभा मुला नेपाली ग्रेन थिम खाङ एन 2008 सोसाइनोन विक्रम सम्बत 2009 वैशाख 26 लाख कुनु ग्याम लागु ताबा मुबा चुनोन राधा डानबान दिङे दाङसे वैशाख निछि डुला कुनुदा थिम दिन्छेन बिसी धाङबा लाभा मुला सा व्यवस्था सहकारी थेन प्राङ्बो निवारण ब्लोन खाङला लोन मदन भुजेलसे सहकारी थुम्री ब्राङ्बा समस्या लिचा धोनान थुम्ना लाबालासी छार सहकारी ठिम मस्यौदा सोबारी तिसी झिन्बा मुला बिसी सुङबा मुला सहकारी सानगिर बोन समाजे याम्बुरी सेङबा गेखोर्दी ब्लोन भुजेलसे दातेदा समस्या थुम्ना लाबारी जेखेन अध्यादेश बाबा हिन्ला बिसी सुङबा मुबा सहकारी ठिम दा सेङबारी गोर ब्लिची ब्रे एन भादक मुला बिसी सुङबा मुला स्यार विज्ञान थिएन प्रविधि ब्लोन सस्मित पोखरेल थिएन नेपाली च्युबा अस्ट्रेलियाला ग्लेबोन साइमन अस्टर्न्स से रूपतासी लेङ्बो

ज्याबा शोभा सुङबान हज लाबारी निभा मोकोन नेपाली मुस्लिम कादेला हज सुरक्षित थेन ज्याबा तागाई बिची सुङबा मुला सरकार से युलबाङ सहकारी नियमन प्राधिकरण ला चोहो थेन विज्ञ सदस्य धान्जी नियुक्ति लाबारी निवेदन रिबा मुला सहकारी एन 2074 थेन प्राधिकरण ला चोहो थेन विज्ञ सदस्य धान्जी नियुक्ति लाबारी सिफारिस ला ठिम 2083 अनुसार सेम तबा नेपाली मिनी ग्याम निवेदन रिबा हिला संयुक्त राष्ट्रसङ्घी शुभा नेपाललाई स्थायी प्रतिनिधि लोक बहादुर थापासे सुरक्षित व्यवस्थित नियमित आप्रा भाषण प्रवर्धन डी नेपाल प्रतिबद्ध मुलाबिसी सुङबा मुला संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई घेजाङरी ताबा निसा मोक्युल आप्रा भाषण काठुरी थापासे सुरक्षित थिएन व्यवस्थित आप्रा भाषण डी बङ पिनबान खाबा नेपाल श्रम पिन्बा ह्युल ताबासे सुरक्षित थिएन मर्यादित आप्रवासनला पछ्यालिन मुलाबिसी सुङबा मुला ग्रेन ठिम्पोन छेन्पो सिफारिस युलेठिम अनुसार आतानी विमान ग्रेन ठिमखाङरी पिन्बा गोर्सोम रिट निवेदन दर्ता लाबारी अस्वीकार लाबा मुला ग्रेन ठिमखाङला प्रशासन चे गोर्सोम नोन रिट दर्ता आलाबा हिन्ला काइब्लोन बालेन्द्र साहला चोबाङरी ओनेचिबा संवैधानिक सेङजाङसे डाक्टर मनोज कुमार शर्मादा ग्रेन ठिम्पोन छेन्पो नियुक्ति लाबारी सिफारिस लाबा मुबा सिफारिस अनुसार तिनमान संसदीय सुनाइला गेनोन तीसी छिन्बा मुला सरकार से चुई सोम स्थानीय तहदा डेंगू संक्रमणला सतर्क ताबारी मोइजेन लाबा मुला इपिडिमियोलोजी थेन सरुवा ह्याम नियन्त्रण महाशाखाला किट जन्य ह्याम शाखा ग्रेनपो डाक्टर गोकर्ण प्रसाद दहालसे होजा चुई सोम स्थानीय तहरी डेंगू संक्रमण मराङबासे सतर्क ताबारी मोइजेन लाबा किन्ला विशेष सुङबा मुला डाक्टर दहालसे ओखल ढुङ्गाला सिद्धिचरण नगरपालिका झापाला भद्रपुर नगरपालिका बिर्तामोड नगरपालिका मेची नगरपालिका थिएन कचना केवल गाउँपालिका सुनसरीला धरान उपमहानगरपालिका म्याग्दीला बेनी नगरपालिका चितवनला भरतपुर महानगरपालिका रूपनदेहीला बुटोल उपमहानगरपालिका मकवानपुरला हेटोडा उपमहानगरपालिका सिन्धुलीला कमला माई नगरपालिका थिएन ललितपुरला ललितपुर महानगरपालिका जोखिमरी मुला पुसेन्से दाते दोना ग्यार्जा डुबीमा लाना मिनेरी संक्रमण मराङसी झिन्बा मुला शाखा ग्रेनपो डाक्टर दहालसे दातेला चु ताइबा नाम्से संक्रमण लेना लाबारी खामला बिसी सुङबा मुला ङाछाला काइब्लोन थेन प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपाला संरक्षक डाक्टर बाबुराम भट्टराईसे पार्टी ख्लासिउबा मुला पार्टीचे तिलमा सेङबाची साङरी डाक्टर भट्टराईसे पार्टीरी आचिबा सुङबा मुला बिसी प्रलोपाला चोहो सन्तोष परियारसे सुङबा मुला चोहो परियारसे बाबुराम दारेम ग्लेठिम पार्टीरी सक्रिय आताना सैद्धान्तिक वैज्ञानिक थिएन ब्रिबा डोबा गे लाबा बिसी सुङबा मुबा जल थिएन मौसम विज्ञान विभागसे चुपालसेला मनसुन दाखाबा जेठ चुई भ्रेला कुनु हेन्से ताबा मानबा मुला दाखाबा असो चुई भ्लिला कुनु दोना ताबा मनसुन्डी ह्युल्ला लाना राङबा घ्लारी तोबा बिमा च्याङना नाम ताइबा थिएन ह्युल नाङरिन छेप्पा लाना ताला बिसी विभागसे मानबा मुला मौतरीला पिपरा गाउँपालिका डु मुसहरी टोल्डी तिलमा न्यासे खाबा लाबा लुङसुरसे लामा मे मुई थान्बा गोठे फुप्सी मेन्दोगिक जामेकोला सिबा मुला तिलमा न्यासे जगरु मुखियाला दिम्री क्यु ग्याम ताइबा नाम ग्याम सोबारी बिसी सुन्दरी सोर दासला मृङ सुनिता सदा गोठे फुप्सी च्याप्दिसी सिबा हिन्ला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ महोत्तरीला प्रहरी सुङबोन शैलेन्द्र भट्टासे सुङबा मुला सुनसरीला बराथुम नगरपालिका घाला तिनकुने मिलिजुली लोफखाङ ङाम्री तिनी स्योरी मोटरसाइकल दुर्घटना तामा मेन्दोगी कमिनी सिबा मुला जोङ प्रहरी गेजाङ सुनसरीला सूचना अधिकारी चन्द्र खड्काचे सुङबा अनुसार तिनी स्योरी दुर्घटना तामा मोटरसाइकल
सेङ्बा धरान उपमहानगरपालिका ब्रे बर गिला सोमचुई दिङला मनिष बस्नेत शिवा मुला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला चुराङ लासिन सल्यान्डी ट्र्याक्टर दुर्घटना तामा ट्र्याक्टर सेङ्बा मिनी घटना ताबा घ्लारिन शिवा मुला

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झासँग सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कानून दोषी के लिए भय आ निर्दोष के लिए आशा भरोसा सहारा हेबाक चाही बतौलनि। राष्ट्रपति पौडेल कानून दिवस 2083 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते ई धारणा व्यक्त कलन। विधि द्वारा स्थापित पद्धति आ परम्परा के पालन तथा कार्यान्वयन में ऊपर नीचा होब लागल त एक प्रतिकूल प्रभाव से मानव समाज भयभीत होइत अछि, ई बात हमरा अहाँके नहि बिसरबाक चाही, हुनकर कहब छलनि। राष्ट्रपति पौडेल नेपाल के संविधान से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा स्वतंत्र निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिका एवं कानूनी राज्य के अवधारणा लगायत के लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता प्रति प्रतिबद्ध प्रणाली की व्यवस्था कने बतौलनि। संघीय नेपाल के संविधान के मर्म एवं वर्तमान आवश्यकता अनुरूप नया कानून के निर्माण आ प्रचलित कानून में समसामयिक सुधार का आधुनिक पद्धति आ प्रविधि के उपयोग से आम नागरिक के न्याय में सहज पहुँच स्थापित करबाक, मुद्दा के शीघ्र व्यवस्थापन मार्फत शीघ्र न्याय सम्पादन करबाक, विधि के शासन कायम करबाक तथा न्यायिक मूल्य मान्यता के क्षयीकरण होबय नहि देबा लेल न्यायपालिका के जन आस्था अभिवृद्धि करबाक सुनिश्चितता के लिए कानून दिवस सबके सकारात्मक सोच हौसला प्रेरणा प्रदान करे कहिक शुभेच्छा व्यक्त कलन। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, कायमुकायम प्रधानिधि सपना प्रधान मल, सभामुख डोल प्रसाद आर्याल, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहाल लगात उच्च पदस्थ अधिकारी सबके सहभागिता रहल छल। सर्वोच्च अदालत के कायमुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष न्यायपालिका के मान्यता, नागरिक के हक अधिकार के संरक्षण तथा विधि के शासन के कार्यान्वयन प्रति न्यायपालिका निरंतर प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। आई 74वां कानून दिवस के अवसर पर शुभकामना संदेश जारी करे तो संवैधानिक सर्वोच्चता, विधि के शासन, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकार के पूर्ण रूप में प्रत्याभूत कर न्यायपूर्ण समाज के स्थापना कर सब में सकारात्मक सोच आ भावना प्रदान करबाक चाही बतौलनि। न्यायपालिका में कायल जाय वाला सुधार के विषय न्यायपालिका के एकांकी विषय नहीं भ, न्यायपालिका के स्वतंत्रता एवं सुदृढ़ीकरण राज्य के समस्त अंग सब के सजिया दायित्व भेल चर्च करत ओ अ सजिया दायित्व के निर्वाह में सबके एकजुट एवं समन्वित प्रयास अपरिहार्य रहल बतौलन। संदेश मार्फत न्यायपालिका रणनीति योजना मार्फत उठाने सुधार के कार्य में न्यायाधीश, सरकारी वकील तथा कानून व्यवसायी, न्यायपालिका में कार्यरत कर्मचारी लगायत सरकार वाला निकाय एवं संस्था सब के सकारात्मक सहयोग प्राप्त होबाक अपेक्षा कायल गेल अछि। संविधान कानून न्याय के मान्य सिद्धांत हिसाबे न्यायपालिका न्याय सम्पादन करत आबि रहल चर्च करत ओ न्यायपालिका सँ न्यायिक सुधार के संस्थागत आ प्रभावकारी बनेबाक उद्देश्य के संग विक्रम सम्वत 2061 साल सँ रणनीतिक योजना तर्जुमा के क्रमिक रूप में कार्यान्वयन करत आयल बतौलन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समाज के वरिष्ठ नागरिक के ज्ञान आ सीप से नया पुस्ता के लाभ लौ सकबाक चाही पर जोर दिलने छे। मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान आया योजना के ज्येष्ठ नागरिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन करे तो धारणा व्यक्त कलन। अय दिस दीर्घकालीन सोच के संग परिपक्व नीति आ व्यवहारिक कार्य योजना बना कर आगू बढ़ सरकार लगात सबके ओ सुझाव दिलन। राष्ट्रपति पौडेल नेपाल के जनसंख्या धीरे धीरे उन्मुख भ रहल दिस बतौलन। ज्येष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य कारखाना, उचित पोशाक आ आवश्यक अवस्था में स्वास्थ्य उपचार सेवा भेटब हुनका सबके अधिकार भेल हुनकर कहब छलन। ओ सब अपन उमेर समूह व अन्य व्यक्ति संग सहज रूप में अंतर्क्रिया करबाक आ सकद परिवार में रहकर जीवन यापन कर के चाही से ओहि पर जोर दिलन। ओ सम्मेलन ज्ञान आ सीप के अंतरपुस्ता हस्तांतरण के संगे दुस्ताबीज के समन्वय के सेतु बन सके कहकर शुभकामना सहित सम्मेलन के सफलता के कामना कलन। राष्ट्रपति पौडेल वामपंथी राजनीति के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी सरल आ सादगी नेता भेल चर्च कलन। ओ बीपी कोइराला संगे मनमोहन अधिकारी लगायत नेता नेपाल के मात्र नहीं भ भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सेहो योगदान देने स्मरण कलन। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के राजनीति सलाहकार असीम शाह नेपालक लेल सऊदी अरेबिया के राजदूत फहद मोहम्मद आजमी मिनिकर आई पवित्र हज यात्रा के लेल मक्का प्रस्थान करय वाला नेपाली हज यात्री के टोली के
विदाय कयलनि अछि। विदाय कार्यक्रममे ओ नेपाल आ साउदी अरब बीचके धार्मिक सांस्कृतिक तथा आपसी सम्बन्ध आ सुदृढ़ हेबाक विश्वास व्यक्त करैत हज यात्रामे सहभागी सम्पूर्ण नेपाली मुस्लिम धर्मावलम्बीके सफल सुरक्षित तथा मङ्गलमय यात्राके शुभकामना व्यक्त कयलनि। ओ सब हज इस्लाम धर्मावलम्बी सबके महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था अनुशासन आ आध्यात्मिक एकताके प्रतीक भेल चर्च करैत यात्रु सबके सहज व्यवस्थापन सुरक्षा तथा आवश्यक सहकार्यक लेल सम्बन्धित निकायके ध्यानाकर्षण सेहो करौने छलथि। मध्य प्रदेशमे पहिल बेर न्यायिक महोत्सव आइ जनकपुर धाममे भऽ रहल अछि। न्यायिक सेवा प्रवाहके थप प्रभावकारी पारदर्शी आ नागरिक मैत्री बनेबाक उद्देश्यके सङ्ग अदालतके कार्य प्रगति मुद्दा पर छूटके अवस्था तथा आबयवला न्यायिक मेला करऽ लागल जनकपुर धाम उच्च अदालतके कायमुकायम मुख्य न्यायाधीश टेक नारायण कुबर बतौलनि अछि। एहि मेलामे अदालतके समग्र कार्य सम्पादन मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सेवा प्रवाह पुरान मुद्दा पर छूटके अवस्था तथा नागरिकके न्यायिक प्रक्रियाके सम्बन्धमे सहज जानकारी उपलब्ध करेबाक उद्देश्यसँ आयोजना करऽ लागल अछि। कायमुकायम मुख्य न्यायाधीश कुबर न्यायपालिका प्रति नागरिकके विश्वास कायम राखयवला शीघ्र निष्पक्ष प्रभावकारी न्याय सम्पादन आवश्यक रहल बतौलनि। हुनक हिसाबे अदालत पुरान मुद्दा पर छोटके प्राथमिकतामे राखिकऽ कार्य कऽ रहल अछि। न्यायके नागरिकके पहुँच विस्तार करबाक लेल सञ्चार माध्यमके भूमिका महत्वपूर्ण रहबाक हुनक विश्वास छलनि। कायमुकायम मुख्य न्यायाधीश कुबरके हिसाबे न्यायिक मेलाके न्यायपालिका नागरिक बीचके दूरी घटेबाक माध्यमके रूपमे लेल गेल अछि। मेला मार्फत अदालतके सेवा न्यायिक प्रक्रिया वैकल्पिक विवाद समाधान कानूनी सहायता तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारण धरि पहुँचायल जेबाक ओ जानकारी देलनि। सरकार राष्ट्रीय सहकारी नियमन प्राधिकरण के अध्यक्ष आ विज्ञ सदस्य पद में नियुक्ति के लेल दरखास्त आह्वान कलक। सरकारी ऐन 2074 तथा प्राधिकरण के अध्यक्ष आ विज्ञ सदस्य पद में नियुक्ति के लेल सिफारिश संबंधी मापदंड 2083 हिसाब इच्छुक नेपाली नागरिक से दरखास्त आह्वान कल गए। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के हिसाब अध्यक्ष पद के लिए अर्थशास्त्र वाणिज्य व्यवस्थापन लेखा कानून व सहकारी विषय में कप्ती में स्नातकोत्तर तह के शैक्षिक उपाधि हासिल कयने हेबाक चाही। तहिना नेपाल सरकार के राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा ओहि तरह के पद में कार्य कयने व अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के बैंक तथा वित्तीय संस्था व सहकारी संस्था में रहकर कमती में 15 वर्ष कार्य अनुभव भेल योग्यता हेबाक चाही तोकल गेल अछि। अहिना विज्ञ सदस्य के लेल अर्थशास्त्र वाणिज्य व्यवस्थापन लेखा कानून व सहकारी विषय में कमती में स्नातकोत्तर तह के शैक्षिक उपाधि हासिल हेबाक चाही। अहिना अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के बैंक व वित्तीय संस्था में सहकारी संस्था में रहकर कमती में 10 वर्ष कार्य कने अनुभव मांग कयल गेल अछि। सूचना हिसाबे योग्यता पहुँचल 60 वर्ष उमेर पूरा नहीं भेल सब एहि पद के लेल दरखास्त द सकत। ओ सब दरखास्त बुझौला काल वित्तीय सहकारी क्षेत्र में देखल गेल विद्यमान समस्या चुनौती अवसर सहित के कार्य योजना सेहो पेश करय पड़त। सूचना जारी भेल 15 दिन भीतर ललितपुर के पुलचौक स्थित राष्ट्रीय सहकारी नियमन प्राधिकरण के कार्यालय में दरखास्त देल जा सकैए। इससे पहले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति समस्याग्रस्त सहकारी के बड़का ऋणी के नाम सार्वजनिक कने छल। समिति के हिसाबे आय समस्याग्रस्त घोषित 10 सहकारी के बड़का ऋणी सबके नाम सार्वजनिक कल गए। समिति सूचना जारी करत संबंधित ऋणी सब यथाशीघ्र समिति के कार्यालय में संपर्क कर ऋण चुकता कर के लिए कहल गए। अन्यथा कानून बमोजिम वसूली कल जात जनाल गेल छल। जिला में बढ़ रहा लागू औषध दुर्व्यसन नियंत्रण करैत सेवनकर्ता के सुधार के दायरा में आने के उद्देश्य के संग जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी लागू औषध सेवनकर्ता खोजी तथा सुधार महाभियान 2063 संचालन कलक। अभियान अंतर्गत सीमा नाका में ड्रग्स टेस्टिंग चेक प्वाइंट स्थापना का ड्रग्स टेस्ट किट प्रयोग मार्फत लागू औषध सेवन भेल व नहीं भेल परीक्षण कयल जात से सप्तरी के प्रहरी उपरीक्षक गौतम बहादुर कुमार केसी जानकारी दिलन। सीमा क्षेत्र में नियमित आवागमन करय वाला युवा युवती के तथ्यांक संकलन का निगरानी बढ़ाल जेबाक तथा सेवनकर्ता के सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री मार्फत प्रशिक्षण देल जेबाक योजना रहल ओ बतौलन। आ मौसम समाचार। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग एहि वर्ष के मानसूनी आबयवला जेठ 18 गते से प्रारंभ होबाक अनुमान कलक। आबयवला आश्विन 14 गते धरि रहबाक मानसून के मे देश के अधिकांश भूभाग में सरदर से कम वर्षा होबाक तथा अधिकतम आ न्यूनतम तापक्रम देश से भरि सदर से अधिक रहबाक विभाग के पूर्वानुमान अछि। मानसून जन्य विपद के कारण देश में हरेक वर्ष अधिक मात्रा में जनधन के क्षति होइत आयल अछि। विपद के वार्षिक आंकड़ाक आधार पर सबसे अधिक विपद के घटना आ क्षति तथा नुकसानी मानसून के 4 महीना के अवधि में होइत आयल अछि। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के हिसाबे बीतल एक दशक में मानसून जन्य विपद से देश से भरि 3074
72 गोटा के मृत्यु भेल छ। एहि घटना में पर 502 गोटे बेपत्ता, 4769 गोटे घायल तथा 33,198 घर परिवार प्रभावित भेल छ। जटिल भूसंरचना, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मौसम विषमता, वातावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल बहुप्रकोप के उच्च जोखिम में रहल छ। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोपीय

होइत गेल अछि। ई विश्व जलवायु प्रणालीमे अधिक परिवर्तनके सङ्केत दऽ रहल अछि। ओ मई महिनामे मात्र समुद्री तापक्रम नया ऐतिहासिक रेकॉर्ड तोड़बाक सम्भावना उच्च रहल बतौने अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस होर्मुज के जल क्षेत्र में ईरान अमेरिका बीच के व्याप्त गोलीबारी संदर्भ में चिंता व्यक्त करते आने वाला दिन में तनाव बढ़ा नहीं देवाक लेल संयमता अपनेवाक आह्वान कयलनि। पत्रकार सब संघ के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के प्रवक्ता स्टेफन डुजारिक महासचिव वर्तमान समय के समझौता के लिए महत्वपूर्ण क्षण भेल कहत थप तनाव रोकत सब पक्ष के अधिकतम संयमता के साथ आगू बढ़ा लेल आग्रह कयलनि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवा सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।